यो नया वर्ष को अवसर में सेंसई का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैशबैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ ही इंस्टेंट कैशबैक पनि र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

यो नया वर्ष को अवसर में बेको का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैश बैक तथा शेयर शॉट गिफ्ट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन, फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद कर सकता।

0: VJ 干劲。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास मीठो खाना का लागि भैडाकोट फन पार्क भैडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि भैडाकोट 5 मोबाइल 98612204437।
1: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

पढ़ायो रतरियो दिल लाइक रंगे ले लवली स्माइल ले यूनिक स्टाइल ले मुटु में गरो नी टच।

वर्ष को अवसर में TCL का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL इंस्पायर ग्रेटनेस।

नया वर्ष को अवसर में मेको का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद कर सकता।

0: गर्मी आयो नो टेंशन ब्रो फैन र कूलर रेडी टू गो सीलिंग फैन स्मूथ फ्लो क्रॉम्प्टन क्वालिटी प्रो नई प्रो
1: यो नया वर्ष को अवसर में क्रॉम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउनुहोस् हरेक 15 दिन में क्रॉम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भई पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ

नया वर्ष को अवसर में गोदरेज का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक ऑफर। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, टॉप लोड में 2 केजी एरियल, ट्विन टॉप में 1 केजी एरियल, माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट र एयर कंडीशनर में फ्री इंस्टॉलेशन। नागरिकता भए पुग्छ, सजिलो ईएमआई मार्फत सजिलै खरीद गर्न सकिन्छ।

0: हाँ बात था बेचारों की स्पेस पे गीत थी निकल नहीं मार मुकित और मेरे साथ कोटा को रोजाई को गीत हमें ले सुनी सके क्या तो कार्यक्रम रमाइलो साज माचो रमाइला साज मा स्पेस पे गीत आरु सुनने कर शो सुनाओने कर शो तब यारु फोन डायल करे रा आप लाई आमन पढ़ने की तारु ऐसे जिने जो तेरा सुनना सकने होने सा आमेरे फेसबुक लाइव मापन जुड़ी रहे क्या था कि साथी अगले संदेश सरूपन पढ़ाऊं भाई को था आ टेलीफोन लाइन में कोई साथी हूँ उन सा को हूँ उन सा स्वागत करो हजुर नमस्कार
1: नमस्कार हजुर मैं तो बारापुर सरोवर वाला बरगासी में
0: बैठी हूँ बरगासी के साल कवर
1: मेरो चाहिँ ठीक ठाक छ हजुरहरूको
0: हाम्रो पनि एकदमै ठिक ठाक छ प्रकाशजी अनि कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ होला हुन्छ हामी एकैछिनमा एउटा गीत सुन्नेछौँ साथीहरूलाई सम्झना समर्पण राख्नु होला है त

0: विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदाय बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204337।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।

0: DJ 战舰。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437।
1: अहिले रातिको 10 बज्यो।